कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

का घर है हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज मंगलवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। यहाँ से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारे सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए।

और रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरि हरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। एक बार फिर से भजन यात्रा प्रोग्राम में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत किया जा रहा है और रेडियो SBS का भजन यात्रा प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में विपिन सचदेवा की आवाज।

भजन आज के ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66-66-11। अनूप जलोटा जी की आवाज में चले मिलकर सुनते हैं ये सुंदर सा भजन।

में ये सुंदर औरत ही सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार बाबला जी की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए बाबला जी की आवाज में अभी आपने सुना। सुन वालो चले प्रोग्राम में श्री हनुमान चालीसा आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।

सुंदर सा श्री हनुमान चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में बजरंग बाण की ओर हम आपको ले चलते हैं, उसके बाद आरती भजन पेश किया जाएगी।

में सुरवलो चले यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से भी आप सभी सुन वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारी सभी सुन वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

0: सुंदर सा आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और इसी आरती भजन के साथ भजन यात्रा का प्रोग्राम आज का जो है खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आप सभी सुनने वालों को रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है सुनने वालों जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman kleine en grote murti. Super

रेडियो वेज में इसके जरिए ये गाना बस पेश की गए कुमार सानू और अलका जी की आवाज में। अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। 8:00 प्रोग्राम में 11 मिनट व्यतीत हो चुका है। सुनने वालों आज मंगलवार का दिन 18 अगस्त का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए, बारिश का मौसम है, बरसात हो रहा है जोर तोर से, फिर भी आप सभी सुनने वालों को खूबसूरत और सुहाना दिन पेश किया जा रहा है। और रेडियो वेस्ट में इसका ये प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। वेबसाइट होता है रेडियो वेस्ट में SBS.NL, उसी वेबसाइट पर रोजाना आपका 10 होरोस्कोप, ज्योतिष शास्त्र, मौसमी समाचार और तरह तरह की इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है उसी वेबसाइट पर रेडियो वेस्ट में SBS.NL। और उसी वेबसाइट के जरिए आप मेल कर सकते हैं और हमारा रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं और मधुना प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं अपना मोबाइल फोन के जरिए, मोबाइल टेलीफोन के जरिए। बारिश का मौसम, बरसात का मौसम है तो चले प्रोग्राम में एक और खूबसूरत गाना। अब की बार उदित नारायण और अलका जी होगा

रेडियो SBS की जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, और वो भी उदित नारायण और अलका जी की आवाज में। गाना बस अभी आपने सुना

बारिश का मौसम में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। Teamsdrive 237, Sjaar Utrechtse, je programma, aap sabhi, aur sabhi, sunne walo ki seva mein bas pesh kiya ja raha hai. Chaliye ek aur khoobsurat gana ki aur hum aapko le chalte hai, is bheega bheega sa mausam mein, to zarur aap sunte hi rehna. शुक्रिया गोसाल और खासतौर पर जावेद अली की आवाज़ में

खास खबर श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। कुछ बारिश के गाने आप सभी के लिए बस पेश किया जा रहा है, आश्रोबित है सुनकर और काफी पसंद आते हैं। चले प्रोग्राम में एक और बारिश भरी गाना आपके लिए पेश किया जा रहा है। इस बारिश का मौसम में अलका एंड उदित नारायण।

गाना जो पेश की गए अजय और श्रेया जी की आवाज में, ये खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अगली बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर।

SBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। बाहर से सुहाना है, अंदर से इंजन पुराना है। गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। अभी आपने सुना सोनू निगम एंड ऋषा शर्मा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: बार का दिन है 18 तारीख अगस्त का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। धीम धीम बारिश हो रहा है कहीं कहीं और कहीं कहीं टूट टूट से बारिश हो रहा है। फिर भी आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। अंधेरा अंधेरा सा मौसम, बादल छाया हुआ मौसम है, तो यहाँ से हम आपको ले चलेंगे पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम की ओर। एक प्रोग्राम जिसमें पुरानी फिल्मी नगमे आप हर एक के लिए बस पेश किया जा रहा है और वो भी गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। तो आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी या चाय।
1: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
0: Goedemorgen. तो चले पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में झूमता सावन देखो आया गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में है।

हर हूँ मोहम्मद रफी की आवाज में झूलता है सावन देखो आया जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। और इस गाना पर काफी सुनने वालों हमारा रेडियो SBS का ऐप के जरिए अपना अपना रिएक्शन दिया है। रिम झिम में पेश की गई पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। और इस गाना पर काफी सुनने वालों हमारा रेडियो SBS का ऐप के जरिए अपना अपना रिएक्शन दिया है। रिम झिम बारिश हो रहा है।

सावन को आने दो जसपाल सिंह एंड कल्याणी मित्रा की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में पेश होगा आज की पुरानी फिल्म में संगीतों का प्रोग्राम में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 030-22-66-66 हेल्प और इसी तरह का नंबर पर आप ऐप भी कर सकते हैं रेडियो SBS का ऐप पर। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में और अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है

समझी अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके हट तेरा रंग।

0: रंग है नशीला।
1: पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

तार भी आते रहते हैं, सुनने वालों भी रेडियो SBS का ऐप के जरिए तार कर रहे हैं। सभी को शुक्रिया, धन्यवाद कि आप सभी हमारा प्रोग्राम में साथ देते हैं। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर। लता जी की आवाज में मंजिल फिल्म का गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, आप जरूर सुनते ही रहना। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जो पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में, लता जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गए। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। खूबसूरत पुरानी नगमे इस बारिश का मौसम में आप सभी सुनने वालों के लिए पेश किया जा रहा है। माइटी मुकेश एंड लता, मिलन फिल्म का नाम और गाना का बोल है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किए गए आया सावन झूम के। सुन वालों घड़ी की ओर देखा जाए सरे 9:00 प्रोग्राम में 8 मिनट व्यतीत हो चुका है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। एक गाना अब की बार प्रोग्राम में पेश होगा द मैन विद एवरग्रीन वॉइस किशोर कुमार की आवाज में, और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 13 मिनट ओवर हाफ तीन स्टूडियो टाइट हो चुका है, 13 मिनट गुजर चुके हैं सर, है 9:00। उत्तराखंड शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर हमारा प्रोग्राम भी इस वक्त इस भीजा भीजा सा मौसम में गर्मा गर्म कॉफी के साथ बस प्रोग्राम को सुनते हैं और एक गाना सुनना चाहते हैं माइटी मुकेश की आवाज में। तो चले मिलकर सुनते हैं पुरानी फिल्म अनारी, उसी फिल्म का ये गाना माइटी मुकेश की आवाज में, बड़ी ही खूबसूरत गाना है, जरूर आप सुनते ये रहना। पुत्र शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर मुकेश की आवाज में ये गाना खुद सुनना चाहते हैं।

कुकेशी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई फिल्म अनार्य का गीत अभी आपने सुना। स्टूडियो की ओर तार किया है कुछ बातें हुए इतर शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर और खबर किया है कि हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और मुझसे गुजारिश किया अगर हो सके तो ये गाना फिल्म अनारी का जरूर आप हमें सुनाइए। तो इसी तरह से आपके लिए पेश की गई असर उम्मीद है सुनकर और बेहद पसंद किया है। चले किशोर कुमार की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है मेरी भीगी भीगी सी सुनबाई किशोर कुमार आज की प्रोग्राम में खूबसूरत पुरानी नख में आपके लिए बस पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। बहुत सी सुनने वालों बस तार कर रहे हैं स्टूडियो की ओर, अपना अपना गाना को मांग कर रहे हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0332666611। इसी तार के नंबर पर आप हमेशा तार कर सकते हैं, टैप भी कर

पांचवें गाना प्रोग्राम में पेश किया जाएगी। आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में कहते हैं गाना का बोल धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। मुकेश और लता जी के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है और गाना को मांग करने वाली है रोटरडम शहर की रहने वाली गीता रॉय। ये गाना सुनना चाहते हैं।

0: और काला उसी फिल्म का गीत बस पेश की गई मुकेश और लता जी की आवाज में कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। रोटरडम शहर की रहने वाली गीता रॉय ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो पेश की गई। हालांकि अंधेरा अंधेरा मौसम है, बारिश का मौसम है, फिर भी गीता रॉय आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों आपको मालूम रहे कि नजदीक आ रहा है कुछ सप्ताह और कुछ दिनों और कुमार सानू और अनुराधा पोटवाल का लाइव कॉन्सर्ट पेश किया जाएगी आफास लाइव आमस्टरडम शहर के अंदर में। जल्द से जल्द अपना टिकट आप खरीदिए istripptickets.com वेबसाइट पर जाकर और वहां पर आप देखेंगे, उसी वेबसाइट पर आप देखेंगे कि हजारों हजारों टिकट बिक चुका है, कुछ टिकट बाकी रह गया है वो भी बहुत जल्द बिक रहा है। तो सब के सब टिकट खत्म, सब के सब टिकट खत्म होने से पहले जरूर अपना टिकट आप समय पर वक्त पर खरीदिए। आज ही जाकर अपना टिकट आप खरीदिए istripptickets.com वेबसाइट पर और मिलकर देखेंगे एक बड़ी ही खूबसूरत शो कॉन्सर्ट कुमार सानू और अनुराधा पोटवाल का, जिसमें कुमार सानू अपना कुछ नए गाने सुनाने वाले हैं, कुछ पुराने उन दिनों का गाने और अनुराधा पोटवाल भी कुछ नए गाने और कुछ पुराने गाने लता जी के गाए हुए गाने भी आपको सुनाने वाले हैं। स्नेल ये टिकट या istripptickets.com वेबसाइट, टिकट काफी जोर तोर से बिक रहा है इन दिनों, इसलिए कि शो जो है कॉन्सर्ट जो है नजदीक आ रहा है। 16 सितंबर आफास लाइव आमस्टरडम शहर के अंदर में। सभी इंफॉर्मेशन रागा इवेंट्स पर आपको दिया जा रहा है।
1: Nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Radio SBS. De brandweer in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen heeft een moeilijke nacht achter de rug. Dat heeft een woordvoerder van de Waalse overheid aan VRT-nieuws laten weten. Het vuur is op verschillende plaatsen aangebakkerd, zodat de brandweer continu moest blussen. De hulpdiensten die ingezet zijn gaan hun 5e dag in. De komende dagen wordt het grijs en druilerig, melden Belgische weerdiensten. En ook de Hoge Veen kan neerslag verwachten. En dat is zeer welkom om de natuurbrand in het gebied onder controle te krijgen. In Colombia is de economische schade van de aardbeving vorige week inmiddels opgelopen tot ruim $9,5 miljard. Dat meldt president de La Espilla van Colombia. De aardbeving kostte ruim 290 mensen het leven. Vooral in de grote steden werden bijna 27.000 woningen en gebouwen verwoest. Ook de infrastructuur is zwaar getroffen door de beving. President La Espilla heeft onlangs zijn ambtgenoot Trump gevraagd om de Amerikaanse importheffingen voor Colombia op te schorten. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid en het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwen Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld gestoken worden in woningbouw, vinden de organisaties. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal alleenstaanden in Nederland sinds 2013 iets is toegenomen. Van alle volwassenen woont 60% met een partner en bijna 10% houdt er een latrelatie op na. Alleenstaanden zijn vooral mensen onder de 25 of boven de 75 jaar, meldt het CBS.
3: Na hun 65ste en zeker vanaf hun 75ste jaar zijn er meer vrouwen dan mannen die single zijn. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij de Schipholtunnel 2 kilometer met 10 minuten vertraging door een te hoge vrachtwagen. A50 Os richting Arnhem. 10 minuten vertraging tussen Renkum en knooppunt Grijshoord in 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderlo langzaam rijden over 6 kilometer. En daar is het oponthoud 10 minuten.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
0: Dat is wat voor programma 4 minuten bij dit hoedje heen. आहिस्ता आहिस्ता फीला भी शुरू हो गई है और जहां जहां पर लंबी फीला होगा तो आप जरूर सुनते ही रहना रेडियो SBS की जरिए रेडियो SBS की जरिए हमेशा न्यूज हाउस में समाचार और फरकीर्स इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है आज दिन में 12 बजे और आज शाम में 6 बजे मृत्यु समाचार बस प्रोग्राम में पेश किया जाएगा मृत्यु समाचार के साथ शोक समाचार भी पेश होगा तो आज दिन में 12 बजे और आज शाम में 6 बजे प्रोग्राम में मृत्यु समाचार और शोक समाचार आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना फोर्ट शहर में सोनिया भी हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं सोनिया आपको भी शुभ दिन आपकी तार के लिए लाख लाख धन्यवाद और आपने एक खास गाना मांग किया है मोहम्मद रफी की आवाज में तो चले गाना आपके लिए बस पेश किया जा रहा है मरहूम मोहम्मद रफी

रेडियो SBS की सर ये गाना बस मोहम्मद रफी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। और खास तौर पर गाना आज की प्रोग्राम में मांग करने वाली थी फोर्टबर्ग शहर से तार किया सोया और सोया ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया सुनना चाहते थे और इसी तरह से बस रेडियो SBS के जरिए पेश की गई है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सभी इंफॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 032-65-65-60। ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में जो पेश होगा और खास तौर पर धीमन शहर का रहने वाला देखा जाए मनोज का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। मनोज भी इस वक्त प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं और ये गाना को सुनना चाहते हैं प्यार ही प्यार फिल्म का नाम देखा जाए मनोज का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। मनोज भी इस वक्त प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं और ये गाना को सुनना चाहते हैं प्यार ही प्यार फिल्म का नाम

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई फिल्म प्यार ही प्यार, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई और धीमन का रहने वाला मनोज का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। मनोज आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए अब की बार उत्तराखंड शहर का रहने वाला विजय भी तार किया है हमारा प्रोग्राम।

इस वक्त सुनते हैं, और एक गाना रामपुर का लक्ष्मण, उसी फिल्म का गाना बस मांग किया है किशोर कुमार की आवाज में, और काफी दिनों के बाद ये गाना बस पेश किया जा रहा है।

लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था रामपुर का लक्ष्मण। उसी फिल्म का गीत उत्तराखंड शहर का रहने वाला विजय ने मांग किया, आज की प्रोग्राम में तार किया और ये खूबसूरत गाना प्रोग्राम में मांग किया है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं हॉलैंडिस के अंदर और हॉलैंडिस के बाहर देश विदेश में भी, सभी को वेलकम। सुनने वालों आज दिन में 12 बजे और आज शाम में 6 बजे प्रोग्राम में अफसोस के साथ मृत्यु समाचार पेश किया जाएगी और एक शोक समाचार, तो जरूर आप सुनते ही रहना। ठीक 12 बजे मृत्यु समाचार और एक शोक समाचार जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी आज दिन में 12 बजे और शाम में 6 बजे। आपको भी खबर किया जा रहा है कि शुक्रवार 28 तारीख अगस्त रक्षाबंधन का दिन है और मुस्कुराता दुकान के पास देनहाग शहर के अंदर में कार्ल रोस्ट्राट नंबर 4 पर आप जाकर अपना राखी जो है 1 यूरो में खरीद सकते हैं। 1 यूरो में आपको राखी यहां पर दिया जा रहा है रक्षाबंधन के लिए। आमस्टरडम शहर के अंदर में हमारा प्रोग्राम महेंद्र भी सुनते हैं। आज महेंद्र घर पर है और हमारा प्रोग्राम बड़ी आराम से बैठकर सुनते हैं और कहा कि गर्मा गर्म चाय लेकर के प्रोग्राम को सुनते हैं और एक गाना सुनना चाहते हैं माइटी मुकेश की आवाज में। सहेली फिल्म का नाम है जिस दिल में बसा था प्यार तेरा। एक बड़ी ही खूबसूरत आमस्टरडम शहर का रहने वाला महेंद्र ने बांग किया है।

आम्स्टरडम शहर का रहने वाला महेंद्र काफी खूबसूरत गाना मांग किया मुकेश जी की आवाज में, जिस दिल में बसा था प्यार तेरा। सहेली फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई 1955 या कहिए 1965 का फिल्म 1965 का फिल्म का गीत पेश की गई। महेंद्र आपके तार के लिए भी लाख लाख धन्यवाद। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो वेस्ट भी इसका प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। और आज भी मॉरिशस में हमारा प्रोग्राम दुष्यंत जिंगरी भी सुनते हैं और एक गाना काफी पुरानी फिल्म का गीत मांग किया है। फिल्म का नाम है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया फिल्म का नाम मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में मॉरिशस देश का रहने वाला दुष्यंत जिंगरी का खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी एंड लता।

0: मॉडर्न इंडिया फिल्म का गाना बस पेश की गई मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, और मॉरिशियस का रहने वाला या कहिए मॉरिशियस देश का रहने वाला दुशन जिंगरी का खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। हमेशा रेडियो SBS का प्रोग्राम मॉरिशियस में सुनते हैं और हमेशा प्रोग्राम में भी हिस्सा लेते रहते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। शुभ दिन पेश किया जा रहा है। हॉलैंड देश के अंदर में बारिश का मौसम है और अंधेरा अंधेरा सा मौसम है। आसरा उम्मीद है कि मॉरिशियस में खूबसूरत सुहाना मौसम होगा। चले प्रोग्राम में खबरें की ओर हम आपको ले चलते हैं। खबरें के बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं।
1: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radio-nieuws op Radio SBS. Het vuur in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen is vannacht op verschillende plaatsen aangewakkerd, zodat de brandweer continu moest blussen. De hulpdiensten die ingezet zijn gaan hun vijfde dag in. In Colombia is de economische schade van de aardbeving vorige week inmiddels opgelopen tot ruim 9,5 miljard dollar. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid en het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal alleenstaanden in Nederland sinds 2013 iets is toegenomen. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat file tussen Stroeg en Hoevelaken 11 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijzoord 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
0: Sunwalu Radio SBS ka program pesh kiya ja raha hai. घड़ी की ओर देखा जाए सर है 10:02 वाइट हो चुका है। 2 मिनट ओवर हाफ एल ऑफ स्टूडियो टाइट हो चुका है और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। सुनने वालों बस ऐप द्वारा भी तार कर रहे हैं, हमारा स्टूडियो का टेलीफोन पर भी तार कर रहे हैं और हमेशा हंसी मजाक होते रहते हैं। आम्स्टरडम शहर के अंदर में आम्स्टरडम साउथ ओस्ट, वहां पर श्रीमती बेया रहती है और वो भी सालों से हमारा प्रोग्राम रेडियो SBS का सुनते हैं। उच्च तार पर कहा कि मैं किसी के रेडियो नहीं सुनता हूं, सिर्फ SBS। सुबह से लेकर के रात्रि तक SBS ऑन रहता है हमारा घर पर, और जब भी लोग आते हैं घर पर तो कहते हैं कौन सा रेडियो आप सुनते हैं, इतनी खूबसूरत गाने पेश होते हैं इस रेडियो पर। रेडियो होते हैं खूबसूरत से खूबसूरत गाने नगमे सुनाने के लिए, ना तार पर लाइव तार करे तार की सरिया और कहे कि क्या खाया क्या पकाया क्या पिया, ये सब बातें तो नहीं होना चाहिए। ये तार पर हो सकता है लेकिन रेडियो पर नहीं। 41 साल हम प्रोग्राम चलाते हैं रेडियो SBS का, लेकिन ये सब प्रोग्राम मैंने कभी नहीं चलाया। तार करे और तार पर बातें करे, क्या खाया क्या पिया, रेडियो है अच्छी सच्ची खूबसूरत गाने सुनाने के लिए। तो तुरंत गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं और श्रीमती बेया आम्स्टरडम साइटो से तार किया है और ये गाना सुनना चाहते हैं। पाकिस्तानी मूवी घराना, तेरा साया जहां पर भी हो सजना।

पाकिस्तानी मूवी घराना का गीत भी इसकी गई तेरा साया जहां पर भी हो सजना। आम्स्टरडम साइटोस की रहने वाली श्रीमती बेया ये खास गाना आज की ये प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। कुछ सुनने वालों की मांगी हुई गाना और भी प्रोग्राम में पेश किया जाएगी। आज जबकि मंगलवार का दिन है 18 तारीख अगस्त का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

लेलीस्तान शहर में हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं, खासतौर पर शलिनी जगह ये हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। और इस बादल छाया हुआ मौसम में, जबकि ये समय समय पर रिमझिम बारिश भी हो रहा है, तो एक प्यार भरी गाना मांग किया है शलिनी जगह ये मुकेश और लता जी की आवाज में। तो चले मिलकर गाना को सुनते हैं। एक प्यार का नगमा है, शोर फिल्म का नाम।

कुमार का खास फिल्म, फिल्म का नाम शोर, मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गए। लेलिस्ताद शहर की रहने वाली शलिनी जगाई ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया, जो रेडियो SBS की जरिए पेश की गए। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। सुन वालों 14 मिनट बाकी है और वो भी 11 बजे में आहिस्ता आहिस्ता पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जो है खत्म होने पर आ रहा है। आज भी बहुत सी सुनने वालों बस तार किया, ऐप किया, अपना अपना गाना को मांग किया है। मैंने एक सुनने वालों की गाना पेश किया प्रोग्राम में, तुरंत काफी ढेर सा तार अंदर आने लगा, ऐप आने लगा, सुनने वालों जो गाना मांग किया आज की प्रोग्राम में। फिर भी सभी को शुक्रिया धन्यवाद कहा जा रहा है कि आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं। कुछ सुनने वालों बस जहां पर नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां पर हमारा प्रोग्राम

सुदमेर शहर की रहने वाली नेहा, नेहा एक खास गाना मांग किया है लता जी की आवाज में। फिल्म का नाम सौतन, जिंदगी प्यार का गीत है, उसको हरदम ही गाना पड़ेगा। लता मंगेशकर। सुदमेर शहर की रहने वाली नेहा की खास मांगी हुई गाना

साउथर्न फिल्म का गीत पेश की गई जिंदगी प्यार का गीत है, खास तौर पर लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई। सुतमेर शहर की रहने वाली नेहा ये गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। आज के प्रोग्राम में हमने इतनी ही सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस हमने प्रोग्राम में लिया। आहिस्ता आहिस्ता भी पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम खत्म समाप्त होने पर आ रहा है और अभी तक सुनने वालों ऐप कर रहे हैं, तार कर रहे हैं, लेकिन यहीं तक हमने सुनने वालों की मांगी हुई गाना लिया और पेश किया। हाजरों भी थे सभी जो सुने, सुनकर काफी पसंद किया है। आने वाले प्रोग्राम में हम आपको फिर मौका देंगे, ये कब होगा जरूर पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम सुनते ही रहना। वैसे पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम हर सुबह 9 बजे से बस पेश किया जा रहा है, तो कभी कभी आप सभी सुनने वालों को मौका दिया जा रहा है गाना मांग करने के लिए। तो चले एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और उसी गाना के साथ ये पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम भी खत्म होने पर आ गए हैं। इस गाना के बाद प्रोग्राम में रिक्लाम होगा, खबरें होगा, न्यूज, मौसमी समाचार और फरकीर्स इंफॉर्मेशन। मत भूलना आज दिन में 12 बजे और आज शाम में 6 बजे मृत्यु समाचार और शोक समाचार पेश किया जाएगा। आखिरी गाना जो होगा एक मंजिल राही दो फिर प्यार मिले, संजोग फिल्म का नाम, मुकेश

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर।

कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाज में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है वेबसाइट radio.sbs.nl। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर, जावेद अली एंड सुनिधि चौहान की आवाज में।

DJ Jimmy Valley en Sushkin Johan, die aan ons meer via het nieuw Sunaatje programma hier op Surat Janam. फिल्म दबंग की ओर सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11 और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए 0322 65 65 60 है। कुमार सानू एन

रेडियो SBS के जरिए कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में हिमेश रेशमिया और साथियों की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। गाना का बोल है उमराव जान।

हिमेश रेशमिया और साथियों की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले अरिजीत सिंह।

अरिजीत सिंह की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में कौर खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

रेडियो SBS के जरिए राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर सुनते ही रहना।

सुनने वालों, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। यहाँ से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला, ऐ दुनिया के मालिक तूने कौन सा खेल खेला। प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए अर्थात गौर फरमाइए। हाउटन शहर से समस्त दुखित परिवार महादेव मिसिर और समस्त लड़कन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे है। डोंडडाग 13 अगस्त 72 साल 72 साल की आयु में पत्नी एल्फी के पति, तीन बेटा और एक बेटी किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा के पिता, तीन पतु और एक दामाद मिरांडा, लिंसी, सकीता और राम के ससुर, एक पोतीन और दो पोता जेडा, जेनाइडो, रोशन और नेलन के आजाम। हाउटन स्कैम्प नंबर 5 का रहने वाला चंद्रदत्त महादेव मिसिर के मृत्यु हो गए है, जो सुरिनाम पारामारिबो अबेनी स्त्रात नंबर 3 के निवासी था। आरती के आखिरी दर्शन करने के लिए आप हर एक को मौका दिया जा रहा है। वोसदाग 19 अगस्त सावंस फन 6 टॉट 7 उटवाट सेंट्रम डालवैक फ्लोरिडा ड्रेव नंबर 7 उतरेख ओवरवेक्ट में। आरती फ्रैडाग 21 अगस्त स्मिदाग्स फना 4 क्रेमेटोरियम डालवैक इन द ग्रोते औला फ्लोरिडा ड्रेव नंबर 7 उतरेख ओवरवेक्ट शहर में दा करिया किया जाए। सुन वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए। रेडियो SBS इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में शोक सहानी भूटी पेश कर रहे हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना किया जा रहा है इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में पूरा पूरा शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम मृत्यु समाचार, दुख की खबर जो पेश की गई है। सुनने वालों, यहाँ से रेडियो SBS का प्रोग्राम में एक शोक समाचार सुनने के लिए आप ध्यान दीजिए। बृहस्पतिवार 13 तारीख अगस्त डोंडडाग 13 अगस्त 72 साल 72 साल की आयु में हाउटन स्कैम नंबर 5 का रहने वाला चंद्रदत्त महादेव मिसिर के मृत्यु हो गए हैं, जो सुरिनाम पारामारिबो अबेनिस्त्रात नंबर 3 के निवासी था। अर्थी फ्राइडाग 21 अगस्त स्मिदाग्स फना 4 क्रेमेटोरियम डालवैक ग्रोते औला में फ्लोरिडा ड्रेव नंबर 7 उतरेख ओवरवेक्ट में दा क्रिया किया जाएगा। पत्नी एल्फी अपने पति, तीन बेटा और एक बेटी किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा अपने पिता, तीन पतु और एक दामाद मिरांडा, लिंसी, सकीता और राम अपने ससुर, एक पोतीन और दो पोता जेडा, जेनाइरो, रोशन और नेलन अपने आजा को बहुत याद करते हुए और भगवान से उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ये गाना बस पेश कर रहे हैं।

बृहस्पतिवार 13 तारीख अगस्त डोंदरदाग 13 अगस्त 72 साल 72 साल की आयु में हौतन स्कैम नंबर 5 का रहने वाला चंद्रदत्त महादेव मिसिर के मृत्यु हो गए हैं, जो सूरीनाम पारामारिबो अबेनिस्ट्रात नंबर 3 के निवासी था। अर्थी फ्राइडाग 21 अगस्त स्मिदाग्स वनाफ 4 uur crematorium Daalwijk Grote Aula me Florida Drive nummer 7 Utrecht overvecht me da kriya kiya jayega patni Elfie apne pati 3 beta aur ek beti Kishan Vikas Amresh aur Karishma apne pita 3 patu aur ek damad Miranda Lindsay Sakita aur kriya kiya jayega patni Elfie apne pati 3 beta aur ek beti किशन विकास अमरेश और करिश्मा अपने पिता 3 पतु और एक दामाद मिरांडा लिंसी सकीता और राम अपने ससुर एक

Het is inmiddels 11 minuten voor half 1 studiotijd. Hoe je ook jouw Radio SBS programma op zondag hebt. इसी तरह से आज के प्रोग्राम में अभी 12 बजे प्रोग्राम में मृत्यु समाचार और एक शोक समाचार पेश की गई है। मृत्यु समाचार और शोक समाचार आज शाम 6 बजे एक बार फिर से प्रोग्राम में पेश किया जाएगी रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना। दोपहर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज मंगलवार का दिन 18 तारीख अगस्त का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को अनहेल खुदा मेरा। सुनने वालों को आपको मालूम होना चाहिए कि सोमवार 6 सितंबर कुमार सानू और अनुराधा पोटवाल का कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं। हजारों लोग अपना टिकट समय पर खरीद चुके हैं। कुमार सानू और अनुराधा पोटवाल का कॉन्सर्ट जाकर देखने के लिए अगर आपने नहीं खरीदा है तो जल्द से जल्द अपना टिकट आप खरीदिए। टिकट इन दिनों काफी जोर तोर से बिक रहा है, खासतौर पर आखिरी समय पर। ढेर सारे सुनने वालों होते हैं, ढेर सारे लोग होते हैं आखिरी समय पर अपना टिकट को खरीद रहे हैं। तो इन दिनों कुछ टिकट जो बाकी रह गया है, लोग जल्द से जल्द बस खरीद रहे हैं। iStripTickets.com वेबसाइट पर जाकर आप भी जल्द से जल्द अभी और इसी वक्त जाकर अपना टिकट को खरीदिए। कुमार सानू और अनुराधा पोटवाल लाइव इन कॉन्सर्ट आफास लाइव में सोमवार 6 सितंबर शो कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं रागा इवेंट्स के जरिए। चले कुमार सानू और सुनंदा शर्मा जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। जरूर आप सुनते ही रहना कुमार सानू जी की आवाज में गाना।

जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। कुमार सानू और अनुराधा पोटवाल का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले है सोमवार 6 सितंबर है। पोर्ट ओपन 6:30 और शो शुरू होगा ठीक 7 बजे। आफास लाइव आमस्टरडम शहर के अंदर में खूबसूरत थिएटर में ये कॉन्सर्ट जो है पेश होने वाले हैं कुमार सानू और अनुराधा पोटवाल जी का। चलिए गाना प्रोग्राम में पेश होगा अब की बार आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में और गाना पेश होगा अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में फिल्म दिल है के मानता नहीं और गाना का बोल है वो मेरे सपनों की सौदागर ook een hele mooie nummer gezongen door de enige echte Anuradha Portwal. O mere sapno ke saudagar. From the movie Dil Hai Ke Manta Nahi.

पोर्टवल की आवाज में ये गाना पेश की गई फिल्म दिल है के मानता नहीं वो मेरे सपनों की सौदागर है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

तानु और अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गए। कोई मेरे दिल में है गाना प्रोग्राम में जो पेश की गए अनुराधा पोटवाल एंड कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट आफास लाइव थिएटर आमस्टरडम शहर में सोमवार 6 सितंबर।

कुमार सानू और अलका जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में उचनक में इस घंटे का प्रोग्राम में कुमार सानू और अनुराधा पोटो का बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। चले ये गाना की ओर, ये गाना भी हमारी बहुत सी सुनने वालों बस पसंद करते हैं। कुमार सानू जी की आवाज में

अरे सानू जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई। आज के प्रोग्राम में कुमार सानू और खास तौर पर अनुराधा पोटवाल जी के कुछ गाने प्रोग्राम में पेश की गए हैं, इसलिए कि कॉन्सर्ट जो नजदीक आ रहा है 16 सितंबर आने वाले महीना 6 सितंबर कॉन्सर्ट पेश होने वाले है आफास लाइव थिएटर, खूबसूरत थिएटर आमस्टरडम शहर के अंदर में, जहां पर बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते रहते हैं। आफास लाइव में कुमार सानू और अनुराधा पोटवाल का लाइव कॉन्सर्ट होगा। रागा इवेंट्स ला रहा है और हजारों हजारों लोग अपना टिकट को खरीद चुके हैं। आप भी जल्द से जल्द अपना टिकट जाकर खरीदिए, जाकर आप देखिए iStripTickets.com वेबसाइट पर कि ज़्यादा टिकट नहीं रहा और इन दिनों आखिरी समय पर टिकट काफ़ी जोर तोर से बिक रहा है। iStripTickets.com उसी वेबसाइट पर अपना टिकट आप अभी और इसी वक्त जाकर खरीदिए। अनुराधा पोटवाल और इस गाना के बाद खबरें होगा, खबरें के बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं और भी मिली जुले नखमे लेकर के। अनुराधा पोटवाल फ्रॉम द मूवी

सुरेश वत्कर की आवाज में ये गाना बस पेश की गए, नाम गूंज जाएगा फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गए सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, चलिए प्रोग्राम में सोनू निगम एंड श्रेया जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

श्रेया जी की आवाज में, सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश हुआ है। चलिए फिल्म नकाब की ओर, जावेद अली की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए शरिया जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आज के प्रोग्राम में।

इसी जरिए कैनबस प्रोग्राम में पेश की गई श्रेया घोषाल की आवाज में नजर फिल्म का नाम। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। चले प्रोग्राम में सोनू निगम, महालक्ष्मी आयर और साथियों की आवाज में द फिल्म नील एंड निकी। अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

एस बी एस की सर ये एंड फिल्म गुरु गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-2266-611।

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हाजिल फिल्म का नाम उसी फिल्म से ये खूबसूरत गाना भी आपने सुना अभिजीत की आवाज में। चले प्रोग्राम में अलका जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

ये फिल्म का नाम हाँ मैंने भी प्यार किया। उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में अलका जी की आवाज में। सुनने वालों चले प्रोग्राम में अरिजीत सिंह की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: uur reclame, het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टर्डम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टर्डम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर

जीना यहाँ मरना वहाँ, इश्क सिवा जाना कहाँ। माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले प्रोग्राम में मुकेश जी की आवाज में एक और खास गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश की आवाज में अबकी बार

कुकीज के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में है। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज की इस प्रोग्राम में ये गाना आप सुनते ही रहे हैं।

फिर आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने।

0: मस्ताना।
1: खास तौर पर आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले काफी प्यार भरी गाना की ओर, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले एक गाना की ओर और वो भी खास तौर पर बदलते रिश्ते फिल्म का नाम है। किशोर कुमार और अनुराधा पोटवल की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुन वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है सुनकर और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। पद्मश्री मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर अब की बार प्रोग्राम में होगा।

कल्याण पूर और मोहम्मद रफी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले आज के प्रोग्राम में एक पाकिस्तानी फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। आलमगीर और खासतौर पर मेहनाज की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

दास की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। अभी आपने सुना पाकिस्तानी फिल्म का गीत जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। पुरानी नख में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी प्रोग्राम में होगा।

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये खास गाना बस आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले लता मंगेशकर की आवाज में अबकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है। लता मंगेशकर प्रोग्राम में

लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अब की बार किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं। किशोर कुमार प्रोग्राम में।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशिली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर पे। हेलो अलमागल, दिस इज यू आरजे अंशिली क्रमलाल, दू वार्त वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt reageren? Kan het altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met 030-262-6611. En voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Het eerste liedje van vandaag is...

मैं आज्ञा चाहता हूं, श्री रामचंद्र जी के लिए कोई संदेशा हो तो आदेश हो माता।

इस गाने में तो आपने पूरी रामायण ही सुन ली। बेहतरीन गाना आपने सुना उदित नारायण और अलका याचिक की आवाज में फिल्म भवाई से। और अब आप सुनिए फिल्म अजनबी से। मुझको नींद आ रही है, सोने दो, दिल कह रहा है कुछ होने दो।

सोनू निगम, अलका याचिक और कोरस की आवाज में आपने सुना ताल पे जब ये जिंदगानी चले, फिल्म रेफ्यूजी से। ये पहला फिल्म था अभिषेक बच्चन और करीना कपूर का। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, फिल्म हेलमेट से। गोल्ड बॉय और शिप्रा गोयल की आवाज में आप सुनिए बर्बाद।

रहना है तेरे दिल में, बस आउट द फिल्म मुझे कुछ कहना है, एंड आउट द फिल्म काबिल कॉम्प्ट काबिल हूँ मैं, खुशों दो जुबेर नौटियाल एंड पलक मुच्चल।

दिया चमके चूरी खन के लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तुम्हारे। इस सॉन्ग दूर सोनू निगम एनल का याचने कैन कम टू द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे। Uit de film Bajrangi Bhaijaan is het volgend liedje via Radio SBS. In het programma Gitong Kelleher hoort u dan Elele, elele, elele, elele, elele, tel beta selfie, lele, re.

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Is आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: के लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर

भी सिर फिरा तू भी सिर फिरी है, गजंगा दौर सिद्धार्थ माधव नीति मोहन एंड करण मेहता एंड कम द फिल्म कट्टी पट्टी एंड द फिल्म कभी अलविदा ना कहना कम द टाइटल सॉन्ग गजंगा दौर अलका याचनिक एंड सोनू निगम।

ऐ मेरी जोहर जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवां, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। फिल्म वक्त से आपने सुना मन्ना दे की आवाज़ में, और रेडियो SBS FM के प्रोग्राम में आप सुनिए अगला गाना। के की आवाज़ में आप सुनिए फिल्म गैंगस्टर से, भीगी भीगी सी है रातें।

तमाशा से आपने सुना अरिजीत सिंह और अलका याचिक की आवाज में अगर तुम साथ हो, और अब आप सुनिए अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में। कमाल खान और अलका याचिक की आवाज में आप सुनिए तुमको ना भूल पाएंगे से, क्या हुआ तुझे।

आप सुनने वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। यहाँ से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला, ऐ दुनिया के मालिक तूने कौन सा खेल खेला। प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए अर्थात गौर फरमाइए। हाउटन शहर से समस्त दुखित परिवार महादेव मिसिर और समस्त लड़कन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे है। दोनों 13 अगस्त 72 साल 72 साल की आयु में पत्नी एल्फी के पति, 3 बेटा और 1 बेटी किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा के पिता, 3 पतु और 1 दामाद मिरांडा, लिंसी, सकीता और राम के ससुर, 1 पोतीन और 2 पोता जैडा, जैनाइडो, रोशन और नेलन के आजा। हाउटन स्केख कैंप नंबर 5 का रहने वाला चंद्र दत्त महादेव मिसिर के मृत्यु हो गए है, जो सुरिनाम पारामारिबो अबेनी स्त्रात नंबर 3 के निवासी था। आरती के आखिरी दर्शन करने के लिए आप हर एक को मौका दिया जा रहा है। Woensdag 19 augustus 's avonds van 6 uur tot 7 uur uitvaartcentrum Daalwijk Florida Dreef nummer 7 Utrecht Overvecht mee. Aartie vrijdag 21 augustus 's middags vanaf 4 uur crematorium Daalwijk in de grote aula Florida Dreef nummer 7 Utrecht Overvecht Shahar mee. सुन वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए। रेडियो SBS इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में शोक सहानी भूटी पेश कर रहे हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना किया जा रहा है इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में पूरा पूरा शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम मृत्यु समाचार, दुख की खबर जो पेश की गई है। सुन वालों यहाँ से रेडियो SBS का प्रोग्राम में एक शोक समाचार सुनने के लिए आप ध्यान दीजिए। बृहस्पतिवार 13 तारीख अगस्त Donderdag 13 augustus 72 साल 72 साल की आयु में हाउटन स्केख कैंप नंबर 5 का रहने वाला चंद्र दत्त महादेव मिसिर के मृत्यु हो गए हैं, जो सुरिनाम पारामारिबो अबेनिस्त्रात नंबर 3 के निवासी था। अर्थी फ्राइडाग 21 अगस्त 'smiddags vanaf 4 uur crematorium Daalwijk grote aula में फ्लोरिडा ड्राइव नंबर 7 यूट्रेख्ट ओवरवेक्ट में दाह क्रिया किया जाएगा। पत्नी एल्फी अपने पति, 3 बेटा और 1 बेटी किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा अपने पिता, 3 पतु और 1 दामाद मिरांडा, लिंसी, सकीता और राम अपने ससुर, 1 पोतीन और 2 पोता जैडा, जनाइरो, रोशन और नेलन अपने आजा को बहुत याद करते हुए और भगवान से उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ये गाना बस पेश कर रहे हैं।

Brehesbediwaar 13 tarich August, donderdag 13 augustus. Behetterzaal 72, zaal Kiajume. Houten, Schechkamp, nummer 5, Karehnevala. Chandardat Mahadev Misirke, Mrityu, Hugeyehe. Jo Suriname, Paramaribo, Abenistraat, nummer 10, Kenivasita. Arte, vrijdag 21 augustus, smiddags vanaf 4 uur, Crematorium Daalwijk, Grote Aula. Florida Dreef, nummer Saat, Utrecht, overvecht mee. Da kriya kia jaega. Patni, Elfi, apne pati. Tien beta, aur ek beti. Kishan, Vikas, Amres, aur Karishma, apne pita. Tien patu, aur ek damat. Miranda, Lindsay, Sakita, aur Ram, apne sasur. Ek potin, aur do pota. Jada, Janairo, Roshan, aur Nailan. Apne aja, ko bahut yaad karte hue. और भगवान से उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए हैं। इसी तरह से रेडियो SBS की सरिये बस प्रोग्राम में एक मृत्यु समाचार और एक सुख समाचार अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गए।

0: लंका फूंक दिए जाकर गढ़लंका, हाँ लंका फूंक दिए हनुमत ने लंका।
1: माता मैं आज्ञा चाहता हूँ, श्री रामचंद्र जी के लिए कोई संदेशा हो तो आदेश हो माता।

इस गाने में तो आपने पूरी रामायण ही सुन ली। बेहतरीन गाना आपने सुना उदित नारायण और अलका याज्ञिक की आवाज में फिल्म भवाई से। और अब आप सुनिए फिल्म अजनबी से। मुझको नींद आ रही है सोने दो, दिल कह रहा है कुछ होने दो।

रहना है तेरे दिल में, बस द फिल्म मुझे कुछ कहना है, एंड द फिल्म काबिल कौम काबिल हूँ मैं, खुजो दो जुबेर नौटियाल एंड पलक मुच्चल।

तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। इस आयुध फिल्म पर रिंदा खसंगदोर, आशा भोसले एंड सुरेश वाडकर। खसंगदोर हेमंत कुमार कॉम दान आयुध फिल्म खामोशी, फिया रेडियो SBS, तुम पुकार लो।

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
3: मैं अनुराधा कोरवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ इंडिया।

दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, आपने सुना फिल्म रोजा से। और अगला गाना है जय जय शिव शंकर फिल्म वॉर से। ये एक फिल्म है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का।

0: तू है अब जो बाहों में करार है, रब का शुक्राना आपने सुना जन्नत दो से। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है जिन्नी विद सनी से, मिक्का सिंह, नेहा कक्कर और बादशाह की आवाज में आप सुनिए सावन में लग गईया के दिल मेरा।
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

बहुत खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी। ये बहुत ही खूबसूरत अल्फाज आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म वत से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में है चाइना टाउन से। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज़ है हमारा दिलरुबा।

पैसा ये पैसा आपने सुना तोतल धमाल से, और अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में है जाने तू या जाने ना से। राशिद अली की आवाज में आप सुनिए कभी कभी अदिति, जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।